सुप्रभात अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 30 मई 2026 शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:19 पर।

ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे मन के आंगन में कहां आऊं, उसमें तो तूने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बिठा रखा है। क्या तू ये गंदगी भरा आसन ही मुझे देगा, जिसके कारण इस मन को निर्मलता और पवनता हासिल होगी। इस साधन इस विधि को अगर तू अपना लेगा तो ज्ञान का उजाला तेरे जीवन में आ जाएगा।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का

अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना

सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आपने ट्यून इन किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। आज सुनहरे पल में हम उस महान संगीतकार की दास्तान सुनेंगे जिन्होंने खामोशी को सुरों का जामा पहनाया, रोशन लाल नागरथ। 1917 में गुजरांवाला अब पाकिस्तान में जन्मे रोशन जी के पिता चाहते थे कि वो संगीत नहीं कुछ और करे, मगर उनके दिल में एक कसक थी। वो घर से भागकर लखनऊ के मरीज कॉलेज आ गए। वहाँ उन्होंने पंडित एसएन रत्नागर से संगीत की वो बारीकियाँ सीखी जो आगे चल के उनकी पहचान बनी। उनकी जिंदगी का पहला सुनहरा पल तब आया जब केदार शर्मा ने उन्हें मुंबई बुलाया और फिल्म बावरे नैन मिली। इस फिल्म ने उन्हें एक ही रात में सितारा बना दिया।

मुंबई में रोशन साहब का संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें एक वक्त दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करनी पड़ी। वही उनकी मुलाकात इरा मोइत्रा जी से हुई, जो एक बेहतरीन गायिका थी। दोनों ने शादी की और इरा जी ने अपने करियर से ज्यादा रोशन साहब के सपनों को सींदा। रोशन जी बहुत नरम दिल थे, कई बार लोग उनका फायदा उठाते थे, पर इरा जी उनकी ढाल बनकर खड़ी रही। संघर्ष के उसी दौर में फिल्म मल्हार आई, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। फिल्म तो नहीं चली, पर संगीत ने धूम मचा दी। संघर्ष के उसी दौर में 1951 में फिल्म आई हम लोग। इस फिल्म ने रोशन साहब को वो पहचान दी जिसके वह हकदार थे। इसका संगीत इतना हिट हुआ कि हर गली में रोशन साहब का नाम गूंजने लगा।

रोशन साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा धमाका 1960 में हुआ। उन्हें बरसात की रात मिली। साहिर लुधियानवी की शायरी और रोशन का संगीत, ये एक ऐसा मेल था जिसने फिल्मी कवाली की परिभाषा बदल दी। रोशन साहब कहते थे कि कवाली सिर्फ शोर नहीं, इबादत होनी चाहिए। इस फिल्म की कवाली न कारवां की तलाश है को रिकॉर्ड करने में 12 से 15 घंटे लगे थे, क्योंकि वो हर ताली और हर हरकत को परफेक्ट चाहते थे।

दोस्तों, रोशन साहब इतने काबिल थे पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलने में बहुत वक्त लगा। 1963 में आई फिल्म ताजमहल, रोशन साहब ने इस फिल्म के लिए संगीत नहीं बल्कि एक अफसाना लिखा था। साहिर साहब के साथ उनकी जोड़ी इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। ताजमहल के संगीत ने उन्हें वो सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। इस फिल्म ने दिखाया कि रोशन जी से बेहतर रोमांटिक और शायराना दुनिया कोई नहीं बना सकता।

लोग समझते थे कि रोशन साहब सिर्फ गंभीर या कवाली वाले गाने बनाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे चुलबुले गाने दिए जो आज भी पार्टी की शान है। रोशन साहब ने दिखाया कि वो सादगी में भी जादू फूंक सकते हैं। मुकेश जी की आवाज को उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म में इस्तेमाल किया वो उनके फन का एक नया पहलू था।

रोशन साहब को राग यमन का बादशाह कहा जाता है। उनका मानना था कि क्लासिकल संगीत ही वो बुनियाद है जिस पर फिल्मी गाना खड़ा होता है। वो अक्सर सुबह सुबह रियाज करते थे और नए सांसों का प्रयोग करते थे। उनकी फिल्म आरती में उन्होंने सारंगी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया कि सुनने वाले रो पड़े। उनके हर गाने में एक अजीब सी नजाकत होती थी, जैसे रेशम का कोई धागा हो।

लता मंगेशकर जी रोशन साहब को अपना भाई मानती थी। वो कहती थी कि रोशन भैया की धुन गाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। रोशन साहब लता जी की आवाज के इतने बड़े प्रशंसक थे कि कई बार वो सिर्फ लता जी को ध्यान में रखकर ही धुन बनाते थे। उनका मानना था कि जो मिठास लता की आवाज में है वो किसी साज में नहीं।

दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि रोशन साहब का सबसे बड़ा काम क्या है, तो मैं कहूँगी फिल्म चित्रलेखा। इस फिल्म के लिए उन्होंने जो संगीत दिया वो किसी तपस्या से कम नहीं था। मन रे तू कहीं ना धीर धरे, इस गाने को भारत का सबसे बेहतरीन फिल्मी गानों में गिना जाता है। इस गाने में संगीत कम और सुकून ज्यादा है। रोशन जी ने इसे बनाने के लिए कई रातें जाग कर बिताई थी। रोशन साहब को दर्द भरी धुनों का माहिर माना जाता था, लेकिन उन्होंने रोमांटिक गानों में भी जो मिठास घोली उसका कोई जवाब नहीं। फिल्म भीगी रात का संगीत इसका जीता जागता सबूत है। मजरू सुल्तानपुरी के साथ उनकी ये जुगलबंदी इतनी हसीन थी कि आज भी प्रेमी जोड़े इन गानों को गुनगुनाते हैं। इस गाने की धुन इतनी फ्रेश है कि लगता ही नहीं है कि ये 60 के दशक का गाना है।

16 नवंबर 1967 वो एक काली रात थी। रोशन साहब एक पार्टी में गए थे जहां उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। सिर्फ 50 साल की उम्र में वो दुनिया से विदा हो गई। उनका जाना संगीत के एक दौर का अंत था। उनके जाने का गम पूरी इंडस्ट्री को था, मगर वो जाते जाते अपनी विरासत बेटों राकेश और राजेश रोशन के रूप में छोड़ गए, जिन्होंने उनका नाम आज भी जिंदा रखा है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को एडिट और रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी और हम लेके आए हैं आज आपके लिए आज के कृषि समाचार। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
2: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कलम विधि से बैंगन के साथ चेरी टमाटर और हरी मिर्च के साथ रंगीन शिमला मिर्च उगा सकेंगे किसान। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक साथ कई पौधों पर चल रहा है रिसर्च। किसान अब सब्जी के एक पौधे के साथ अन्य सब्जी भी उगा सकेंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का सब्जी विभाग ग्रैफ्टिंग तकनीक यानी कलम विधि के जरिए सब्जियों के एक साथ कई पौधे तैयार कर रहा है। इसमें बीमारियों से रोधक जड़ और अधिक उत्पादन वाली दड़ की किस्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनवरी 2025 में शुरू हुई यूनिट में अब तक हरी मिर्च पर शिमला मिर्च व रंगीन शिमला मिर्च उगाई जा रही है। इसके अलावा जंगली बैंगन के साथ बेल वाला टमाटर और चेरी टमाटर पर रिसर्च हुए हैं। इनका प्रदर्शन HAU कृषि मेले में भी किया गया है। जंगली बैंगन नोमिटोड रोधी होने के कारण रूट स्टॉक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यूनिट में अब कद्दू व लौकी की जड़ के साथ तरबूज, खरबूजा, टिंडा व खीरा लगाया जाएगा। दावा है कि ये सेंटर हरियाणा का पहला सब्जियों का ग्रैफ्टिंग सेंटर है। इससे पहले जापान, कोरिया, स्पेन जैसे देशों में 1920 से ही 80% सब्जियों का उत्पादन ग्रैफ्टिंग पौध से ही हो रहा है। भारत में अभी ये 5% भी नहीं है। यह है ग्राफ्टिंग तकनीक। HAU सब्जी विभाग के हेड डॉक्टर SK तेलहान ने बताया कि पौधों में ग्राफ्टिंग कलम बांधना एक वनस्पति तकनीक है। इसमें दो अलग अलग पौधों को क्लिप के माध्यम से इस तरह जोड़ा जाता है ताकि वो एक ही पौधे के रूप में विकसित हो सके। इसमें जड़ वाले भाग को रूट स्टॉक कहते हैं, ऊपर के भाग को रसायन कहते हैं। ये विधि सब्जियों, फलों और फूलों के उत्पादन में तेजी लाने और अच्छी नस्ल के पौधे तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है। पॉली हाउस में नहीं आती नोमोटोड की समस्या। ग्राफ्टिंग यूनिट की इंचार्ज डॉक्टर इंदु अरोड़ा ने बताया कि इस तकनीक से सब्जियों की जड़ों को बदलकर बिना रसायन के नोमोटोड की समस्या से संरक्षित खेती में निदान व मृदा जनित फंगस की बीमारियों जैसे फ्यूजोरियम, बैक्टीरियल विट आदि का समाधान संभव है। अवैविक तनाव जैसे लूनी मिट्टी, अधिक वर्षा या सूखे के लिए ग्राफ्टिंग रिसर्च भी सेंटर में आरंभ की गई है। मृदा जनित रोग भी खत्म होते हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ग्राफ्टिंग केंद्र के कलम विधि से सब्जियों की पौध तैयार करने एवं प्राकृतिक गुणों से भरपूर देसी प्रजातियों को रूट स्टॉक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च हो रहा है। इस विधि से सब्जियों में नोमोटोड एवं मृदा जनित रोग भी समाप्त होते हैं। प्रोफेसर BR काम्बोज, कुलपति हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। न्यूजीलैंड की नौकरी छोड़कर बेटी ने संभाला पिता का ऑर्गेनिक फार्म। सालाना 10 से 12 लाख आय ले रही है। खरखोदा में 3 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है नित्या। खरखोदा की रहने वाली नित्या दहिया ने विदेश में प्रतिष्ठित कंपनी में सालाना 40 लाख का पैकेज वाली HR की नौकरी छोड़कर अपने गांव खरखोदा लौट आई है। यहां पिता सुरेश के ऑर्गेनिक फार्म को नई दिशा दी। मां उमावती दहिया वर्षों से प्राकृतिक और स्वास्थ्यप्रद खेती को बढ़ावा देती रही हैं, जिससे अब नित्या आगे बढ़ा रही है। करीब 3 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है। अभी सालाना 10 से 12 लाख आय ले रही है। नित्या के पति विवेक पिछले 17 वर्षों से न्यूजीलैंड में इंटरनेट प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्यरत हैं। गांव लौटकर नित्या ने एसडी नेचुरल प्यारे नेचुरल डिवाइन ब्रांड की स्थापना की और पिता के फार्म को पुनर्जीवित किया। यहां प्राकृतिक खेती के तहत गेहूं सहित कई फसलें उगाई जा रही है, जो शुद्धता और गुणवत्ता का उदाहरण है। नित्या का कहना है कि उनका लक्ष्य फार्म व्यवसाय करना नहीं, बल्कि लोगों को ऑर्गेनिक और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा नित्या ने खरखोदा में ड्राई फ्रूट का आउटलेट भी शुरू किया है, जहां सीधे कश्मीर से उच्च गुणवत्ता वाले बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, केसर, अंजीर, किशमिश, मखाना और चिलगोजा उपलब्ध रहते हैं। ये ऑर्गेनिक पौधे बने मिसाल। फार्म में सेब, आम, केला, चीकू, नींबू, पपीता, जामुन, अंजीर, शहतूत, करौंदा जैसे पारंपरिक फलों के साथ ड्रैगन फ्रूट और एक्वाडो जैसे विदेशी पौधे भी लगाए गए हैं। साथ ही इलायची, बांस, फिक्स, चमेली और सजावटी पौधों का भी समावेश है, जिससे फार्म एक विधि और उन्नत मॉडल बन गए हैं। गेहूं, धान, गन्ना की फसल लेते हैं, बाद में खुद के प्रोडक्ट बनाने शुरू करेंगे। गांव में दूर दराज के लोग भी इस फार्म हाउस को देखने आते हैं।
2: बेमौसम बारिश व पारे में उतार चढ़ाव से सब्जियों का बचाव करना जरूरी। सिल्वर मल्चिंग कवरिंग शीट का उपयोग करें किसान। बेमौसम बारिश और अचानक तेज धूप के कारण वातावरण में असंतुलन पैदा हुआ है। इसका प्रतिकूल प्रभाव सब्जियों की फसलों पर पड़ सकता है। खुले खेतों और पॉली हाउस व नेट हाउस में लगी सब्जियों की वानस्पतिक वृद्धि, फूल उत्पादन और फलों के आने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा, सलाहकार प्रोफेसर सब्जी विज्ञान महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल ने बताया कि यदि किसान कुछ वैज्ञानिक सावधानियां और आधुनिक कृषि विधियां अपनाएं, तो सब्जियों को बदलते मौसम के प्रभाव से बचाया जा सकता है। सब्जी उत्पादन के लिए 40 से 45 सेंटीमीटर ऊंचे बेड का प्रयोग करना चाहिए, जिनका ऊपरी हिस्सा 60 से 65 सेंटीमीटर हो। इन बेड़ों पर 130 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 से 30 एमएम

0: या ट्रिंकल सिंचाई विधि से ही पौधों को पोषक तत्व और पानी दें। इन दिनों रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण खेतों में फ्लड इरिगेशन खुला पानी देने से बचें। साथ ही भूमि की तैयारी के लिए 1% का ढलान सुनिश्चित करें। फफूंदी जनित बैक्टीरियल और विषाणु रोगों के नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह अनुसार इलेक्ट्रॉन साल्सा रेनमान एमिस्टा टॉप ट्रीडियम सेक्ट्रीन और अजूरा डाइफिनाकोनाजोल अजोक सिस्ट्रोबिन कंजेंट जैसी आधुनिक फफूंदनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी एक फफूंदनाशक की 80 ग्राम मात्रा को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें।
1: ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपको लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है आप जरूर हमारे साथ साझा करें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि हम अन्य लोगों तक उस जानकारी को पहुंचा सकें। हमारा नंबर आप नोट करें 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब हमें दीजिए इजाजत और उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और उन्नत रहिए।
0: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।
1: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किडनी। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के इस रंगमंच पर हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी के बीच कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें सोचने, महसूस करने और जीने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ खास पल जिनमें है बात, जज्बात और एक नया नजरिया। मैं हूं किरणी और पेश है कार्यक्रम रेडियो पॉडकास्ट विद किरणी। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। मजबूत बच्चे घर पर बनते हैं। इस बदलती और असुरक्षित होती दुनिया में कुछ ऐसे नियम हैं जो बच्चों को जिंदगी के हुनर की तरह सिखाए पढ़ाए जाने चाहिए। नियम जो बच्चे की सुरक्षा, आत्मविश्वास बढ़ाए और व्यक्तित्व को भीतर से मजबूत करें। हमेशा सच बोलना है सजा के डर के बिना। अक्सर बच्चे झूठ इस डर से बोलते हैं कि सच्चाई बताने पर डांट पड़ेगी। यहाँ पहला नियम बने, सच बोलने पर भरोसा मिलेगा, सजा नहीं। बच्चे को ये महसूस कराए कि उसने कोई गलती की है, लेकिन सच बोलकर उसने बहादुरी दिखाई। सच बोलने पर तुरंत उसे समझाने से बच्चा भाई नहीं ईमानदारी चुनता है। ये नियम उसे जीवन में भी डटकर सच के साथ खड़े रहने का साहस देगा। सवाल करने की आजादी। ये मत पूछो, ये बात बड़े होकर समझोगे, ऐसे जवाब बच्चों की सोचने की ताकत को सीमित कर देते हैं। घर का नियम हो, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, चाहे वो रिश्ते, समाज, लोगों, किसी से भी जुड़ा हो। बच्चा जब सवालों को बिना डर पूछता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और झिझक की जंजीरें टूटती है। सवाल करना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। किस सवाल का जवाब कैसे देना है ये बड़ों को मालूम होना चाहिए। ना मतलब ना, हर रिश्ते में। ये नियम सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, घर के भीतर भी उतना ही लागू हो। अगर बच्चा किसी भी खेल, बात या सुपरिश से असहज महसूस करे, उसकी ना तुरंत माने। जब आप बच्चे के इनकार का सम्मान करेंगे, तभी वो दूसरों से भी वही सम्मान पाने की और सहज पूर्वक अस्वीकृत जताना सीखेगा। ये नियम बच्चों को यौन शोषण, भावनात्मक शोषण या दोस्ती के नाम पर दबाव झेलने से बचा सकता है। किसी को भी छूने की इजाजत ना देना। गुड टच, बैड टच समझाने से आगे बढ़े। नियम साफ हो, बिना अनुमति के कोई किसी को भी छुएगा नहीं, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों न हो। ये नियम बच्चों में अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार का एहसास कराता है। साथ ही बड़े भी सतर्क रहते हैं कि बच्चे की सीमाओं का उल्लंघन ना हो। इससे बच्चों में आत्मसम्मान और सुरक्षित सीमाओं की समझ विकसित होती है। मैं नहीं जानता, जानती कहना भी ठीक है। बच्चों को हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। कभी कभी उन्हें बताना कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पता करूंगा, ये भी उन्हें सिखाता है कि इंसान हर बात नहीं जान सकता और सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे उनमें झूठ बोलने की आदत नहीं बनती, बल्कि जिज्ञासा और शोध का हुनर पनपता है। गलती करना अपराध नहीं है। घर का नियम बने, गलती सीखने का मौका है, शर्म का कारण नहीं। बच्चे जब गलती करने के बाद भी समर्थन पाते हैं, तब वे जोखिम उठाते, कुछ नया सीखते और चुनौतियों से जूझने के काबिल बनते हैं। ऐसा माहौल उन्हें भविष्य की असफलताओं से नहीं डरने देता। इन कायदों के फायदे। बच्चों में आत्मसम्मान मजबूत होता है, अपराध बोध और डर का माहौल खत्म होता है, मानसिक सेहत बेहतर रहती है। वे अपनी सीमाएं तय करना सीख, जिससे यौन शोषण का भावनात्मक शोषण से लड़ पाते हैं। बच्चों की तर्क शक्ति को, उत्सुकता को पंख लगते हैं। उन्हें ना कहना और सुनना आता है, जो वयस्क जीवन में बेहद काम आता है। घर का माहौल अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन बनाता है, जिसमें बच्चे भी सुने और समझे जाते हैं। दोस्तों, कहानियां खत्म होती है, लेकिन उनके जज्बात हमारे साथ रहते हैं। उम्मीद है कि आज की बातें आपके दिल तक जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए रंग, एक नए सुर और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: तुछ बोजान 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ।
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
3: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत, कवियत्री और शैव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
5: नमस्कार, आज का जो ललवाक है बहुत ही विचित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसको समझने से एक चीज तो समझ में आती है कि ललदेत की जो शिवत्व की समझ है वो इतनी गहरी है कि एक आम आदमी उसे समझ नहीं सकता। आज का विज्ञान उसको समझने का प्रयास कर रहा है, परंतु मैं पहले आपको ललवाक बताता हूँ। ललवाक है शिव छी जैविल जाल वाहरेवित क्रंजन मंशी तैरित कहत, शिव छी जैविल जाल वाहरेवित क्रंजन मंशी तैरित कहत, जिंदने वुछहन अधकर मरित, जिंदने वुछहन अधकर मरित, पान मज पान कट व्यसरित क्या। ललदेत कहती है कि शिव शी जैविल जाल वाहरेवित, शिव जो है एक ऐसे जाले की तरह है, एक ऐसा फैब्रिक है जो बिल्कुल ही अति सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं है, और वो पूरा फैला हुआ है पूरी यूनिवर्स में। जैसे साइंस हमें आज कहता है ना, क्वांटम साइंस कहता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में बोलता है, क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी के बारे में बोलता है, क्वांटम वैक्यूम के बारे में बोलता है, कि एवरीथिंग इज मैनिफेस्टिंग आउट ऑफ दैट क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी हमें दिखती नहीं है, वो एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उसी में से निकलता है। ललदेत ने उसी क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी को अनुभव किया है, और ललदेत कहती है शिव छी जैवल जाल वहरे। देखिए कितना वैज्ञानिक तथ्य है, कितना वैज्ञानिक अनुभव है जो वो हमारे सामने साझा कर रही है, कि शिव छी जैवल जाल वहरे, यानी फैला हुआ पूरी यूनिवर्स को उसने अनुभव किया है कि शिव जो है वो हर एक जगह वास कर रहा है। जैसे एक बर्तन है, बर्तन के अंदर जैसे पॉट है, पॉट के अंदर स्पेस है, उस स्पेस में एयर है, लेकिन वो स्पेस जो है वो स्पेस हमें दिखती नहीं है, हमें तो पॉट बाहर से दिखता है, पॉट का जो बाहरी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो दिखता है और उसी से हम उसको रिलेट करते हैं। लेकिन अगर वो पॉट टूट जाए उस इनर स्पेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो हमारे इसी तरह ललदेत भी कहती है कि शिवची जेविल जाल वरेवित क्रंजन मंशी तैरित है। क्रंज मीन्स ये अस्थि पिंजर, उस पॉट की तरह है ना, उस घड़े की तरह है, और इस क्रंजन में, इस स्केल्टन में, इस पॉट में, इस बॉडी में वो जो शिव है वो उस स्पेस की तरह वास किए हुए है। क्रंजन मंशी तैरित क्या थी, यानी वो जो स्पेस की उसने बात की है, उस क्वांटम फील्ड की उसने बात की, उस एनर्जी की बात की जो दिखती नहीं है, वो इस अस्थि पिंजर, इस शरीर के अंदर वास कर रही है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। लेकिन हम रिलेट किससे करते हैं, हम रिलेट करते हैं उसको अपनी इस बॉडी से। फिर कहती है जिंदने विछान अधिकार मरित, यानी हम लोगों को हम लोग सोचते हैं कि शिव को, हाँ हम शिव को जब एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे या उसकी आराधना करेंगे, तो हम कहते हैं हाँ करेंगे, पहले मैं कुछ हो जाऊँ, पहले मैं कुछ बन जाऊँ, पहले मेरी प्रायोरिटीज़ बड़ी अलग तरीके की प्रायोरिटीज़ है, क्योंकि मैं फिज़िकल वर्ल्ड में रहता हूँ तो फिज़िकल अटैचमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये जो अनुभव है जिसको मैं देख नहीं पाता हूँ, ये अनुभव मैं कहता हूँ ये बाद में करूँगा, इसलिए बुढ़ापे में करूँगा, ओल्ड एज में करूँगा। तो ललदेत कहती है ये ओल्ड एज वाला, ये डेफर करने वाला मैटर नहीं है, ये अभी वाला मैटर है, ये जो हमारा डिलेइंग वाला थॉट प्रोसेस है कि बाद में करेंगे या ओल्ड एज में करेंगे, ये एक सेल्फ डिसेप्शन है। तो वो हमें सचेत कर रही है कि जिंदने विचान अधकर मरित, अगर अभी आपने इसको अनुभव नहीं किया, लेकिन हम लोग अनुभव क्यों नहीं करते, कभी आपने सोचा होगा हम इसको डेफर क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और फिजिकैलिटी जो हमें फिजिकल आईज से दिखती है हम उसी पे विश्वास करते हैं, हमें फिजिकैलिटी में मंदिर, हमें फिजिकैलिटी में मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये फिजिकैलिटी में दिखते हैं, इसलिए हम उसको वहीं ढूंढते हैं, हम उसको हवन में ढूंढते हैं, हम उसको उपवासों में ढूंढते हैं, हम फिजिकैलिटी में उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ललदेत सचेत करती है हमें कि और तरीका है उसको ढूंढने का, और वो है इनर वर्ल्ड में जाने का। लेकिन वहाँ हम जा क्यों नहीं पाते, क्योंकि हमारा ईगो जो है एक वेल बन के खड़ा हो जाता है, वो हमें देखने नहीं देता, क्योंकि हमारी वो एबिलिटीज़, हमारे वो स्किल सेट्स, हमारी वो कॉम्पिटेंसी डेवलप ही नहीं हुई है कि हम उसको उस दृष्टि से भी देख सकें। इसलिए ललदेत कहती है जिंद ने उछान अधकर मरित, जिंद मतलब आपको इनर वर्ल्ड की ओर जाना है, अदरवाइज तो हम मरे ही हुए हैं, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में उसको देख रहे हैं तो हम फिर उसको रियलिटी में देख ही नहीं रहे हैं। तो ललदेत यही कहती है कि उसको अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करना है, परंतु हमारा लोभ, मोह, अटैचमेंट्स, हमारी पावर, हमारी पोजीशन, हमारी जो ईगो है, ये हमें प्रिवेंट करती है उसको इमीडिएटली देखने में। तो वो यही कहती है जिंदने उछान अधकर मरित पानमज पान कड़वे सैरित, क्या पानमज पान माने खुद के अंदर से उसको अनुभव करने का आप प्रयास करो, और उस ईगो को ट्रांसेंड करने का प्रयास करो, इसको पोस्टपोन मत करो, इसको अभी आप अपने एक्शन प्लान में लीजिए और स्टार्ट कीजिए उस अनुभव को करना। ये एक दिन का अनुभव नहीं है, परंतु अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका इनर फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपको नए आयामों, नए डायमेंशंस की ओर लेके जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप उस शिवत्व को अनुभव करने का आनंद उठाओगे और वो आपकी आपकी दृष्टि बदल देगा, वो आपका व्यवहार, आपकी पूरी परिकल्पना को एक नई दिशा देगा। नमस्कार।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: Deutsche Bozan, 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हंद।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

रात की मुसाफिर फिरते हैं डेरे डेरे बस्ती बस्ती, तलाशते हैं खोई हुई पहचान। ये रात भी मेहरबान होती जरूर गर कोई पुकारता। अपनी सोबत में रख कर ये जानने की कोशिश करता कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है।

बिखरती हैं तस्वीरें और भीड़ में गुम हो जाते हैं वो चेहरे जिनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए हम रहते हैं बेताब, और यह बेताबी दिल में छुपती है। धीरे धीरे करवटों के सायों में जिंदगी गुजर जाती है यूं ही बेवजह, और ख्वाब आंखों की पुतलियों में बस जाती है यूं ही बेवजह।

यहां अक्सर परछाइयों से रिश्ते बने हैं और सायों से लिपटते रहे हैं। उदासी में सोए हैं, उनकी यादों में खोए हैं। जब जब मौसम बदलते रहे हैं, जब जब मौसम बदलते रहे हैं, तुमको अपने तस्वीर में उतारते रहे हैं। कुछ तुम कहते गए और कुछ हम सुनते गए।

जाओ, हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे आपसे रुख

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।
0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
5: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से, प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। इस कार्यक्रम में हम हर मर्तबा बात करेंगे किसी भी एक गोल्डन ईरा मूवी के बारे में और जानेंगे उनके अनकहे किस्से और सुनेंगे उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1970 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जिसने 2020 में अपने 50 साल पूरे किए हैं। वह फिल्म है आन मिलो सजना, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार राजेश खन्ना और आशा पारेख। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल दत्त। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनाता हूँ इस फिल्म का एक गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, कोई नजराना लेकर आया है।

0: गीत तो था बहुत मधुर। अब गीत से मुझे इसी फिल्म के एक और गाने का किस्सा याद आया। इस फिल्म में एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं। इस गाने के आखिरी चंद सूर्यास्त के समय शूट किया जाना था, इसलिए सभी जल्दी में थे और हड़बड़ी में काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों एक दूसरे की पंक्तियां गाने लगे और बाद में इस किस्से को याद कर खूब हंसे। तो अब गाने को याद कर ही लिया है, इसे सुन भी लेते हैं किशोर कुमार की सुरीली आवाज में।
1: अच्छा

अच्छा तो हम चलते हैं। अरे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक और किस्सा जरूर सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के एक और गीत की शूटिंग धान के खेतों में होनी थी, जिसमें बहुत कांटे थे, जिस वजह से आशा जी को बहुत दर्द सहना पड़ा, जिसने उनके लिए इस गाने को और कठिन बना दिया था। और वहाँ केवल एक ही वॉशरूम था, इसलिए वह शूटिंग के बाद ही होटल वापस जा सकते थे। इतनी कठिनाई के बाद भी आशा जी ने मुस्कान के साथ इस गाने को शूट किया और हमें मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस ना होने दिया। अब इस गीत के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो आपको सुना भी देता हूँ, जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, रंग रंग के फूल खिले।

किस्सों का सफर जारी है और गीतों का भी। कहा जाता है इस फिल्म के दौरान आशा पारेख जी को चोट लग गई थी, लेकिन आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चोट उन्हें इस फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि किसी और फिल्म के सेट पर लगी थी, और जब वह वहां से शूट कर इस सेट पर पहुंची तो चोट की वजह से उनसे जूता नहीं पहना गया, जिसके बाद ओम प्रकाश ने उनके एक्सरे जांच की व्यवस्था की और फिल्म के एक दृश्य में काका ने उन्हें उठाया। आप देखेंगे कि वह नंगे पैर और उनका पैर सूजा हुआ है। थी ना यह रोचक जानकारी। अभी और किस्से और गीत बाकी हैं, उसके लिए बने रहे हमारे साथ और सुने लता जी की आवाज में यह गीत, तेरे कारण मेरे साजन।

आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का गीत। हम सब जानते हैं राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वह कितने लोकप्रिय थे। इस फिल्म के एक गाने को छोड़ बाकी सभी गानों की शूटिंग कश्मीर में हुई और उस समय राजेश खन्ना जी को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और खासकर लड़कियों की, जिस वजह से कभी कभी शूटिंग में देरी हो जाती थी या शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। अब कश्मीर में शूट हुआ एक गीत भी आपको सुना देते हैं किशोर की आवाज में, जवानी ओ दीवानी।

आप सुन रहे थे 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आज हमने बात की है आन मिलो सजना फिल्म के किस्सों के बारे में और अब चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर और आपको सुनाता हूँ एक आखिरी किस्सा। आन मिलो सजना में 6 सुपरहिट गाने थे जिनमें से ज्यादातर किशोर जी, लता जी और रफी साहब ने गाए, लेकिन इसमें आशा जी के खाते में भी एक गाना आया। यही नहीं, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी, ओम प्रकाश जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनके साथ यह पहली फिल्म थी। आम तौर पर ओम प्रकाश जी ने शंकर जय किशन जी के साथ काम किया है, इसी वजह से शंकर जय किशन जैसा अच्छा बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर थी। और लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी कहते हैं यह उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा और आपको छोड़े चले जाऊँगा आशा भोंसले जी के गाए हुए इसी फिल्म के नटखट गीत के साथ, पलट मेरी जान। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से, लिखा आरजे सेजल ने, प्रस्तुतकर्ता व रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: मैं धरती इस पंजाब दी, मैं धरती इस पंजाब दी, मैनू छन्नी किता लोकां ने, वखो वखरी वंडियां पा के चूस लिया इन्हां जोकां ने, मैं धरती उस पंजाब दी, मैं धरती उस पंजाब दी।
1: बहुत सोहनी कविता सी है भी, ते उम्मीद करते हाँ इदा ही तुसी इन्नियां सोहनियां कवितावां लिखते रहो ते इदा ही सुनांदे रहो सानू। ते उम्मीद करते हाँ साडे श्रोतावां नू भी अज दा प्रोग्राम पसंद आया होएगा ते कवितावां दा आनंद उन्होंने जरूर लिता होएगा। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसी साडे स्टूडियो विच आए ते साडे श्रोतावां नाल रूबरू होए।
0: जी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं 90.0 FM का बहुत बहुत दिलों धन्नवाद करता हाँ कि उन्होंने एक निमाणे जे बंदे नूं माण बख्शिया ते इत्थों तक ये मुकाम दिता, ते बहुत बहुत शुक्रिया, धन्नवाद, थैंक यू
1: जी। असी फिर हाजिर होवांगे तुहाडे लई एक होर कार्यक्रम लैके बहुत जल्द। उदों तक सानूं दो इजाजत ते सुनदे रहो 90.0 MHz ते रेडियो वतस्ता, हम सफर जिंदगी दा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 5। आज के मेहमान थे प्रवीण वर्मा खिप्पल। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: गीला है।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गए।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: तुसी सुन रहे हो अम्बाला दा अपना रेडियो।
3: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
2: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदारा 90.0 मेगा।

रहो अपने पसंदीदा की। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
3: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
5: 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। गर्मी में मधुमक्खियों का बढ़ जाता है मोमी कीड़े का प्रकोप, रोकने के लिए विशेष जाली लगाएं। मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक प्रबंधन से शहद का उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसान। मधुमक्खी पालन एक बेहद संवेदनशील और मुनाफे का व्यवसाय है, ऐसे में मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों के लिए मई और जून का महीना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। डॉक्टर कमल सैनी DHO ने बताया कि गर्मियों के इन कठिन दिनों में अतिरिक्त ध्यान और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर किसान न केवल अपनी मधुमक्खियों को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उत्तम गुणवत्ता वाले शहद का बम्पर उत्पादन लेकर अपनी आय को भी दुगना कर सकते हैं। गर्मियों में यदि मधुमक्खियों के पक्षों का सही प्रबंधन न किया जाए तो न केवल मक्खियों के भागने या मरने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि शहद के उत्पादन में भी भारी गिरावट आ जाती है। गर्मी में मोमी कीड़ा, वैक्स मॉथ और पीली ततैया का हमला बढ़ जाता है। बक्सों की नियमित सफाई करें और प्रवेश द्वार पर ततैया को रोकने के लिए जाली का उपयोग करें। पक्षों का तापमान नियंत्रित रखने के लिए छायादार स्थानों का चयन करें। मधुमक्खियों के बक्सों को कभी भी सीधे धूप में ना रखें। इन्हें पेड़ों की घनी छाया के नीचे स्थापित करें। यदि छायादार पेड़ ना हो तो बक्सों के ऊपर पुआल, पराली या हरी नेट, ग्रीन शेड नेट डालकर कृत्रिम छाया का प्रबंधन अवश्य करें। गर्मी में बक्सों के ऊपर जूट की बोरियां टाट डाल दें और उन पर दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करें। इससे बक्से के भीतर का तापमान नियंत्रित रहेगा और मक्खियां शांत रहेंगी। गर्मियों में मक्खियों के छत्ते को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी दूर होगा तो मक्खियों की ऊर्जा सिर्फ पानी लाने में ही नष्ट हो जाएगी। बक्सों के बिल्कुल नजदीक लगभग 10 से 20 मीटर के दायरे में साफ और ठंडे पानी के बर्तनों की व्यवस्था करें। पानी के बर्तनों में सूखी लकड़ी के टुकड़े, जूट की रस्सी या कंकड़ पत्थर डाल दें ताकि पानी पीते समय मधुमक्खियां डूबकर ना मरें। चाशनी बनाकर बॉक्स के अंदर रखें। इन दिनों में प्राकृतिक रूप से फूलों की कमी हो जाती है, जिससे मक्खियों को पर्याप्त मकरंद, नेक्टर और पराग पॉलन नहीं मिल पाता। इस कमी को पूरा करने के लिए चीनी व पानी को 1:1 में घोल चाशनी बनाकर पक्षों के भीतर फीडर में रखें। ध्यान रहे घोल शाम के समय ही रखें ताकि अन्य बाहरी मक्खियां या चींटियां आकर्षित ना हो। सूरजमुखी व औषधीय पौधों के पास रखें बॉक्स। फ्लोरा फूलों वाले क्षेत्र की मैपिंग शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए बक्सों को ऐसी जगहों के पास रखें जहां सूरजमुखी, मक्का, हरा चारा या औषधीय पौधे हो। रानी मक्खी की देखभाल। बक्से में रानी मक्खी का सक्रिय होना सबसे जरूरी है। यदि रानी मक्खी बूढ़ी हो चुकी है तो उसे नई और ऊर्जावान रानी मक्खी से बदलें ताकि अंडों का उत्पादन सही रहे और कॉलोनी में कामगार मक्खियों की संख्या कम न हो। वीडियो देखकर जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। गोबर और गौमूत्र से तैयार की खाद, 10 एकड़ में सालाना कमा रहे 10 लाख रुपए। किसान संदीप ने प्याज, धनिया, गोभी, तोरी और घिया के खुद के बीज तैयार किए। हिसार के गांव चूली देसावली के किसान संदीप कुमार करीब 20 साल से परंपरागत खेती कर रहे थे। गांव में गेहूं, कपास, ग्वार, सरसों आदि का फसल चक्र ज्यादा चलता है। इनमें खाद व फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के कारण खेती में ज्यादा बचत नहीं निकल रही थी। करीब 8 साल पहले संदीप ने YouTube पर रोहतक के प्रगतिशील किसान राम सिंह का वीडियो देखा, जिसमें वे ऑर्गेनिक तरीके से खेती के टिप्स बता रहे थे। यहीं से संदीप ने भी ऑर्गेनिक खेती करने की ठानी। 10 एकड़ के फॉर्म में शुरुआत में आधा एकड़ जमीन पर सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती शुरू की। राम सिंह से मोबाइल पर बात करके टिप्स लेते और सब्जियों में उसी तरीके से खाद देते। इसके बाद कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत के गुरुकुल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली। अब संदीप
अपने 10 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। करीब 10 लाख रुपए की आमदनी सालाना हो रही है। संदीप बताते हैं कि गोबर और गोमूत्र की खाद तैयार करके सिर्फ इसी खाद का प्रयोग वे खेत में कर रहे हैं। यह खाद भी सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर सब्जियों की फसल को देते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करते हैं। मंडी में भी अब उनके खेत की ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर किसानों को कर रहे जागरूक। संदीप ने बताया कि वे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जागरूक कर रहे हैं, साथ उनको फेसबुक के जरिए टिप्स देते हैं। किसान उनके खेत में आकर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे किसानों को सब्जियों के कल्चर भी मुफ्त देते हैं, जिसमें कंपोस्टिंग, फंगस व जीवाणु होते हैं। संदीप बताते हैं कि उसने अब तक प्याज, धनिया, गोभी, तोरी और घिया जैसी फसलों के खुद के बीज तैयार किए हैं। इनके जरिए ही वे अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। प्याज के 2 वैरायटी तैयार की है। इसमें एक फगवा रंग का प्याज है, इस वैरायटी का नाम M1 रखा है। दूसरी वैरायटी का प्याज पूरी तरह से सफेद रंग का देसी प्याज है। इसी तरह अन्य सब्जियों के बीज खुद के खेत में ही तैयार करते हैं। बीज व खाद का खर्च ना होने पर खेती का खर्च भी कम हुआ है। गन्ने की फसल में हो सकता है काली कीड़ी और पोका बॉइंग का आक्रमण। फसल पड़ जाती है पीली, ऐसा होने पर बचाव के करें उपाय। गन्ने की फसल में काली कीड़ी और पोका बॉइंग रोग का आक्रमण हो सकता है। इन कीट का नियंत्रण जरूरी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PR काम्बोज ने बताया कि 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। छिड़काव घोव पर करें ताकि दिन के समय ब्लैक बग बच्चे या प्रॉड नष्ट हो जाएं। कभी कभी अष्टपदी माइट का आक्रमण होने से पत्तों पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके लिए 600 मिलीलीटर रोगो 30 EC को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। गन्ने की फसल में गर्मियों में 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण को एंट्रोजेन 50 घुलनशील पदार्थ 1.6 kg प्रति एकड़ का छिड़काव 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर करें। चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के लिए 2-4D सोडियम सॉल्ट 1.0

ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056641310। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में, तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें, आबाद रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सुनन खातर हरियाणवी सॉन्ग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर, ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ

खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रुपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
3: सही रास्ता, सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: कच्छ महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुम चु बोजा रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूं। रेडियो वितस्ता चु पन्न माज जेव पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेत हमेश इवान। बचुस तुहुंद रेडियो दोस्त भरत सपोरी। आज चुस बु तुहुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मंज अख नव डल हेत आमुत। आज बोजनाओ इस तो अख कशर अफसान यु जन लिखमुत चु सान कशीर हिंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी साबन। अथ अफसानस चु नाव पोज अपुज। वलिव बोजव ये अफसान पोज अपुज। अख लकुट अफसान अमिक लेखन वल चु वीरेंद्र पटवारी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा
1: गीत।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का

सुनिए और सुनाइए, रेडियो दस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी, किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: हम थे वो थी हम थे।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: याने प्यार हो गया।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
2: www.sdcollegeambala.ac.in

0: Dalać mil एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: पेशा प्रोग्राम शामे गजल, एपिसोड 2, कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
5: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

सांसें भी उदास, दिल भी है बेकरार। जिंदगी के सफर में कुछ तो है यार, हर कदम में ठोकर खाए मगर फिर भी मुस्कुराहट से आगे बढ़े।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 9। आज का विषय है दिल की बात। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन व प्रस्तुत किया आरजे किरने ने।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका एक खास सफर में, जहां दिल की बातें करेंगे, दिल से दिल तक का सफर। लेकर आई हूं रेट्रो का एक और अंक, दिल की बात, जहां हम पुराने गीतों के जरिए उन यादों को फिर से जिंदा करेंगे जो कभी आपके दिल के कोने में छुपके से बस गए थे। दिल की बात दिल में छुपाया नहीं करते, वक्त बहुत कीमती है, इसे जाया नहीं करते। जाहिर कर दो जज्बात अपने दिले नादान के, मन की बात बोलने में वक्त लगाया नहीं करते।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो

खामखा ही परेशान हो जाएगा कोई भी शख्स, हर किसी को दास्ताने दिल सुनाया नहीं करते। ख्वाबों में तो तुम मेरी हो चुके हो पूरी तरह, फिर क्यों हकीकत में सामने आया नहीं करते।

0: यादों की तिप्स में सुलगा है ये दिल मेरा, हम भी यूं बेवजह नाराज नहीं हुआ करते। तुझसे मोहब्बत मुझे पहले भी था, आज भी है, वरना हर रोज तेरी तस्वीर सीने से लगाया नहीं करते।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गा

अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है।

दिल की धड़कन भी एक कहानी कहती है, हर धड़कन में छुपी कोई निशानी रहती है, कभी खामोश तो कभी शोर मचाती है, दिल तो बस प्यार का गीत सुनाती है।

दिल है छोटा सा पर इसमें गहराई है, हर धड़कन में छुपी एक परछाई है, कहना चाहे जो बातें मगर चुप सा है, दिल भी तो इंसान की तन्हाई है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 9। आज का विषय है दिल की बात। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में दबकर पक जाते हैं जब सदियों तक निभ जाते हैं।

साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं, अलग अलग अलग अलग परछाइयों की

जी आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही, और हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02:50। श्रोताओं, सुरीले गीतों, दिलचस्प चर्चाओं और अपनों के साथ ये खूबसूरत सफर अब अपनी मंजिल पर आ चुका है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भरत सोपोरी। अब समय हो चला है रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज के आज के प्रसारण को यहीं विराम देने का, लेकिन विदा लेने से पहले आज का दिन बेहद खास है। आज 30 मई है, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज ही के दिन साल 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने कोलकाता, जिसको पहले कलकत्ता कहा जाता था, से भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मारतंड, उगता हुआ सूर्य का प्रकाशन शुरू किया था। परिधीन भारत में सीमित संसाधनों के बीच हिंदी पत्रकारिता की जो मशाल जलाई गई थी, वो आज हम सब के भीतर चेतना बनकर धधक रही है। भारत में हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता की आवश्यकता क्या है, आइए जानते हैं। श्रोताओं, आज इस मंच से ये सूचना जरूरी है कि हमारे देश में हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता की प्रासंगिकता और आवश्यकता इतनी ज्यादा क्यों है। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, जन जन की आवाज और संपर्क सूत्र। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दिलों को जोड़ती है। हिंदी पत्रकारिता केवल खबरें नहीं पहुंचाती, बल्कि देश के सुदूर गांवों में बैठे व्यक्ति की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाती है। ये आम आदमी की भाषा है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे गहरा है। दूसरा, लोकतंत्र का सजग प्रहरी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली पत्रकारिता जब हिंदी में होती है, तो ये समाज के सबसे बड़े वर्ग को जागरूक करती है। निष्पक्ष और निर्भीक हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के आधुनिक भारत के निर्माण तक हर बड़े बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। तीसरा, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। हिंदी पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल की बात नहीं करती, ये हमारी संस्कृति, लोक कलाओं, नैतिक मूल्यों और मिट्टी की खुशबू को भी जिंदा रखती है। ये हमारे समाज का आईना है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आपका ये रेडियो दोस्त भारत सोपोरी ने केवल स्कूल में उर्दू पढ़ी है, और हिंदी हमने घर में पढ़ी है, और हम आज भी 100% यानी 100% कोशिश करते हैं कि हम आपसे वार्तालाप हिंदी में ही करें, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में हिंदी में ही बात करनी चाहिए। आज के इस डिजिटल दौर में भी हिंदी पत्रकारिता का दायित्व और बढ़ गया है, ताकि भ्रामिक खबरों के बीच सत्य और निष्पक्षता की खास बीच की साख बची रहे। हम प्रणाम करते हैं उन सभी कलम के सिपाहियों को जो आज भी सच के सामने लाने के लिए डटे हुए हैं। तो यह था आज का विषय। श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां कह रही है कि आज का सफर यहीं तक था। कल सुबह फिर एक नई ऊर्जा, नए गीतों, नई उमंगों, नए तरंगों के साथ वितस्ता की लहरों पर आपसे मुलाकात होगी। आज की इस खूबसूरत शाम को अपने इन लिखी पंक्तियों के साथ आपको विदा करता हूं, और मैं भी आपसे विदा होता हूं। पंक्तियां हर दिन की तरह लाता हूं, और आज की पंक्तियां यूं है, कलम की धार से सच का सवेरा लिखते हैं, कलम की धार से सच का सवेरा लिखते हैं, हम अंधेरों में भी उम्मीद का डेरा लिखते हैं। विदा लेते हैं आज इस दुआ के साथ वितस्ता से, विदा लेते हैं आज इस दुआ से वितस्ता से,
कि मोहब्बत से हम दिलों पर अपना बसेरा लिखते हैं, कि मोहब्बत से हम दिलों पर अपना बसेरा लिखते हैं। तो ये था आज का टॉपिक और आज की पंक्तियां। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल मई महीने का आखिरी तारीख 31 मई 2026 रविवार है। 5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होगी वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए प्रकाश प्रवाह। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6:00 भक्ति संगीत और सुनेंगे आप शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम हरियाणा सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे आओ गांव चलें एपिसोड 13। कल हम आपको लेके चलेंगे गांव रजापुर। 8:00 तुम्हें याद हो कि ना याद हो कल एपिसोड होगा आनंद बख्शी पर। 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट और स्मार्ट फोन के दुष्प्रभाव होगा शीर्षक। 9:30 रेट्रो हिट्स एपिसोड 6। 10:20 पर दोस्ती अनमोल एपिसोड 2। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6:00 भक्ति संगीत। 6:30 शाम में गजल और 7:00 होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10। 8:30 सुहाना सफर हर दिन की तरह कार्यक्रम होगा बोलते मुजस्सम, पेश करेंगे रमेश मरहटा। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि ये महीना मई का आपको पसंद आया होगा। और कल इस महीने का आखिरी दिन का प्रसारण है, उसके बाद हम जून की ओर चलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज से अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे, बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।